मी एड्रेस माय कंट्री इंडिया हरियाणा ओल्ड फरीदाबाद नो सिटी मी विलेज खानपुर भोपानी पुलिस चौकी के पास माय नेम टीटू नाथ माय ब्रदर नाम केलानाथ इंडिया हरियाणा जाति सपेरा स्नेक चार्मर बीन मैजिक कलाकार रेडियो सिंगल ओके थैंक यू।